0: ही खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे सांदर है दिलागा वाली दीदा सशाई हो रहे।
2: जी दाखो मेरे रेडियो पर बाजूर से उखसिए दो नो दा बैंड में तो वो 88.4 वर बंदे रोग लाल
1: तारे खाना दा 88.4 से शायदी
2: MSD 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो वर बंदे रोग ला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी दो 88.4
3: हर यो अरमान बदी पूरा कम सका खाल तलाड़म तालब बंगड़ी रोड़म
1: ब्याहवार साचे बाजोर तालुशी चे वारो डियो जुन ता जहां ओखला चे दास खोर्ज खोर्ज परुगामिना ब्या जहां ओरवो
2: बिल्कुल में जीर साचे सी वारो डियो तु ता हां ओखला त बिल्कुल पा 88.4 बंदे खोर्ज खोर्ज परुगामिना खोर्ज खोर्ज सांदरे अवरे दाई से

गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क।

हाँ जी बिल्कुल मिनालो, आपके कॉल भी आ रहे हैं, कॉल का इंतजार भी, और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे और आपके कॉल भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खूबसूरत सॉन्ग की तरफ, उसके बाद आएंगे आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस, और मौजू जो हमने लाए हैं उस पर भी बात करेंगे कि जो वक्त गुजर गया है उससे आपने क्या सीखा है।

और जी बिल्कुल, सबसे पहले शान की तरफ नईद अख्तर की आवाज में है, शायद आपको भी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और नईद अख्तर की ये सॉन्ग तेरी उल्फत में सनम शायद आपको पसंद आए या ना आए, मुझे तो पसंद है। और क्यूट लला जान की पसंद, आपकी पसंद, नईद अख्तर की आवाज में

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο γίνεται από τα σαπάρ, σε τα σαπάρ, σε τα
1: Για να τι σε τα ρεχανά, από σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, όχι στη δί.
0: Ίσμα washing powder, μάρα με ζει μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βοήβη. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίσε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γυλε με χάρβα, τε μου τα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα, ίσμα washing powder, βοήβολ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरो उदार तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पड़ी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो हुई दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সাহেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেজি

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जानाती से तारखे ना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी उस टूल कुर वाला ना फसल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो दवा मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे आंद्रोन लाकी गेट जानसे बे गाले परसो ए मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला जी
2: यू आर लिस्निंग रेडियो अमर नेटवर्क
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर आजमाओगे तो मर जाऊंगा। एक आरजी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती में, एक आरजी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती में, तू जहाँ मुझे कहोगे वही उतर जाऊंगा। और हाथ पकड़ोगे तो साया बन के साथ चलूंगा, हाथ पकड़ोगे तो साया बन के साथ चलूंगा, हाथ छोड़ोगे तो हमेशा के लिए बिखर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, दिस इज मी रास्के के हमदर्द वंस अगेन जी, वेलकम मोस्ट वेलकम टू द ऑल लिसनर। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन कर रखी, ये गुलगुल एंड बुलबुल वॉइस।

और प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को जनाब जी वेलकम, खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हमारा ये साथ और घड़िया ठीक तर 1 बजे तक होगी। मेरी आवाज जहां जहां तक भी गूंज रही है, जिन कानों तक, जिन समा तक पहुंच रही है,

और वो कहते हैं ना कि मौसम बदल गए, जमाने बदल गए, लम्हों में दोस्त बरसों पुराने बदल गए, और दिन भर रहे जो मेरी मोहब्बत की चाँव में, वो लोग धूप डलते ही ठिकाने बदल गए। कल जिनके लफ्ज लफ्ज में चाहत थी प्यार था, लो आज उन लबों के तराने बदल गए। एक शख्स क्या गया मेरा शहर छोड़कर, एक शख्स क्या गया मेरा शहर छोड़कर, जीने के सारे ढंग पुराने बदल गए। और अब वो न रहा मैं न रहा, अब वो न रहा मैं न रहा, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए।

0: नेक्स्ट कलर गुरु जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, चूक तिर सर किम जोना
1: वाई
0: वाई सवाई
1: चिड़िया चू चू करती है कुछ खाने के लिए।
0: चिड़िया चू चू करती है
1: कुछ खाने के लिए।
0: कुछ खाने के लिए
1: मैं कॉल करती हूँ गीत बजाने याद दिलाने के लिए।
0: अच्छा, मैं कॉल करती हूँ अपने दिल का हाल सुनाने के लिए।
1: नहीं,
0: हाँ
1: गीत बजाने याद दिलाने के लिए।
0: अच्छा, याद दिलाने के लिए।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ओ मगर मच जी, शुक्रिया से खबर कही। अच्छा, खुशी बाजी में दो बाजी सड़े माशे जना इज्जत मनाशे खतर मनाशे।
1: थैंक यू
0: सही बाजी प्रोग्राम नो सरा स्टार्ट ना और भी
1: आके मा दा आदत दिल फाखता कना।
0: हां
1: तो दल प्रोग्राम का एक तो तेरे नवयो एक दल प्रोग्राम जका बस तेरे ना हबारा सा बजर जन बंद।
0: अच्छा, बे रेडियो ना बंद आवे
1: ओ गल में दा तब के फाखता के ता प्रोग्राम ता हर रेजर से इवारे जे खदा सिन दे सी जे तो खपल प्रोग्राम ने विकदा।
0: बस दगा से कना खपल ड्यूटी ओ खपल मिनवालो सरा आगा जुंगे इंतजार के दा एहसास वी कना नु जका कोशिश कऊ चा खपल इज नोर जरूरी चारे पेंडिंग को ओदल तरुश। अच्छा, वो मुखा खांदल का
1: ना
0: डेढ़ डेढ़ माह खोदो कला कला अमी वाला चप्पल ही चीदी का नगा पो हवा के कना 120 स्पीड सर चली जी शाह माशाल्लाह दुम रशा अम्मी मोदा का ना अम्मी जिंदाबाद सही सही हो रखे यो जहान मना दे काल का वले चाह हो रहा कोई तो दुआ सलाम टेम रुसरा भी ही काम मदा
1: अब तो टाटिंग मैंने जहाँ लियो लियो खड़ी मम्मी खबर तो कब
0: करा वक़ा वक़ा वक़ा
1: ये से मुसलमान एक कामिल मुसलमान आगा दा करना था हदीस तक ना।
0: जी जी
1: कामिल मुसलमान आगा दा के आगे लोस और जुबान न चीजी करना बल मुसलमान महफूज आवी
0: महफूज आवी बेशक वे देखे शक नाश्ता है
1: बल अलावा ये अलावा ये खाना का बच दवा वराना का हो इंसान जरा की दवा माँ
0: पकावा
1: जब ये खबर है तो कहते हैं काम दा नोरो फांदे बह काल के मो दे लगे तो सुमर पस्ता रेश
0: वाला
1: ओ बल दफा जे तने फिल्म रिश्ते तो काम दे मो तो कवी जाए ना ये तो कमन
0: बिजा है तो का पास का पास का पास का
1: ओ रता स्पेशल में कि दा कना दा गुल सेंटर के दवे तने सालो मेर कवा ओ दागत दो अर्श एंड नुसी के अनुसी के दवे तने मेर कवा मेहनूर तने मेर कवा जैनब वजीर तर शहान तक कशफ सा
0: वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल प्रोग्राम सरोवर चाचा हो रखो सलाम वाला जल्द हवा पे चपा होता वर से दल खुशी बाजी यो जहान मना दे काल का वाले थैंक यू सो वेरी मच इज्जत मना शे कदर मना शे।

भाई गणेश जी सलाम, वेलकम टू द शो. एक बार अच्छा एक बार पे बेहद राजू अजय राजू खान खाम थर आई एम चम चम न्यू लिसनर, मुझे वेलकम करो चम चम. ओके जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु. आपको चम चम प्रोग्राम में चम चम वेलकम करते हैं. चम चम हर कलाई रोश है चम चम. ये फर्स्ट टाइम मैसेज का वाले यो जहान मनना है चम चम. वैसी नजीउल्लाह फ्राम बेचनी और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट उर्दू है और मेरा पेपर में 100 में 97 नंबर है. ओके जी नजीउल्लाह वेरी गुड. हम खुद ही नंबर इन ऐसा न जोड़ी जी कुर्बान हम शी उर्दू पो भी अलग है. हाँ कहना तो तदिरसी उर्दू तलफुज लहजा द बेस्ट पेचार दशा. ओ वेरी गुड प्राउड ऑफ यू.

आंसर इज बिल्कुल सही जवाब हो जुबेदा नूर मुंग तो मैसेज करे दे और तासु जवाब हम चुकुम दे बिल्कुल सही देखा तासु जवाब बिल्कुल ठीक थे डेर जत मन ने को तासु मुंग तो मैसेज उगलो दिन लवा विच अस्सलाम वालेकुम तारिक माम मोस्ट वेलकम टू द यशमा कॉस्मेटिक बेस्ट शो संगे आवाज विच शो और माम वॉइस देपो 92.97.4 90.8 रेडियो क्लियर दे वही कहना चाहिए पबी के सजासरा और पचीराट रोड मेजर बाजार के जुबेर अहमद सरदेशमा टोल प्रोडक्ट मिलेगी इट्स मी टो सिस्टर साइम एहसास एंड असमा इखलास फ्रॉम नौशेरा साथ डेरे जिया मना रखो लोहिया खजा से और वैसे मामू दो सवाल जवाब दें बिल्कुल सही जवाब दे रखे खा जवाब बिल्कुल ठीक गुलो नहीं खटक हम तो मैसेज करे डेरे जिया मना रखो और वही कहना चाहिए फ्रॉम करक बाई भी कॉल न मिलेगी ना हो हाँ जी बिल्कुल कॉल न मिलेगी नंबर डेज बीजी देता कॉल रजी हो नोर कॉल जन शमश मिल वाले असलाम वालेकुम जो अरीशा यमा दबनीर खजीदा मैसेज मालो अरीशा मिल खड़े दे सासु डेरा मना नखे भी विच इस्लाम भाई आपकी पोस्ट तो बहुत नाइस है किरण सवाबी ने मुंग तो मैसेज कर दे खजी अजिया तो मना नको थैंक यू सो मच मुंग तो मैसेज कर दे असलाम वालेकुम मैं आर्मा भाई सवाल जवाब दे ना जी बिल्कुल जवाब दे गलत देता डेरा जिया बन ने कभी नेक्स्ट भाई शो मो रिकॉर्डेड द या लाइव लाइव प्रोग्राम दे रिकॉर्ड चरत के दे ना सो भाई लाइव प्रोग्राम देखा नो दस डेरा जिया बन ने को खजे सासो मैसेज ज्यादा

अच्छा जी मग तो मैसेज कर दे जावेद यमा द शाही तंगी बाजोड़ ना वजह सरमासरा देश में टूर प्रोडक्ट में लभेगी और पदुगान के साथ हो डेरा जाता बना ना क्यों तब मग तो मैसेज उकड़ो देने लवा ना दिया मग तो मैसेज कर दे साथ हो डेरा जाता बना ना क्यों वेलकम वही तब सहा प्रोग्राम के वेलकम इनेश मकस मेडे के अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई रेडियो में ऑन कर दाहो थर्ड बंद रखले भाई संग ये सब बिल्कुल ठीक ठाक प्रोग्राम हो डेर जबरदस्त से सवाल जवाब माप ख्याल खजी खुशी खान खटक मैसेज कर दे और तासो बिल्कुल कॉल बने हम रखले खैर आखिर के बेमा सलाम सजी संग ये यासीमा द ब्यूटीफुल बाजवड़ ना सठूल मीनवालो था सलाम इश्मा कॉस्मेटिक जिंदाबाद डेरा मना ना गुलाले मुंग तो मैसेज करे था थोड़े रजियत मना ना को वजीर स्थान ना मैसेज करे दे हाजी सिर्फ नाम शिमिलो मा टाइम रस रकम दे सलाम संगई बाई प्रोग्राम और मा जवाब दे बिल्कुल सही और अनाय मुंग तो मैसेज करे था थोड़े रजियत मना ना लोया खजशी बल मुंग तो मैसेज करे दे जुबेदा नूर मुंग तो मैसेज करे था थोड़े रे मना ना लोया खजशी और जवाब दे बिल्कुल सही देखा देने लवा सारा खान मुंग तो मरदान ना मैसेज करे था थोड़े रजियत मना ना लोया खजशी पूरा मैसेज निशम शिमिलो वाले जो टाइम दे रस रकम देन लवा सैम्य साथ मुंग तो ब्याह मैसेज करे था थोड़े रे मना ना कभी खुक भाई सवाल जवाब दे बिल्कुल सही जवाब शाइस्ता दीर नमक तो मैसेज कर दे ताजो डेरा मना ना कभी खजी दचा मैसेज का पाती शुनो बहुत वकी ना जगह टाइम रस कम दे सना हटर का मुंग तो मैसेज कर दे ताजो डेरा जाता मना ना खजी प्रोग्राम के मां सवाल लग रहे चाह सदी चे मतलब ओ वो के मड़केगी हम ओ मतलब ओ वो के पैदा की गई हम ठीक था नो सवाल सही जवाब एग्जैक्ट चुकम जवाब दे हगा दे बर्फ ठीक था सही जवाब दे बर्फ मुंगता चुकम खुशी खान हटका बिल्कुल सही जवाब रखेड़ो सासो जवाब हो बिल्कुल ठीक थे देने लवा नासिश मुंगता द टांग ने जवाब रखेड़ो सासो जवाब हो बिल्कुल ठीक हो और देना इलावा चा मुंगता जवाब रखेड़े वो आई थिंक अली ना हटक मुंगता सही जवाब रखेड़ो खैर दे तब बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक तरफ ना गिफ्ट जरूर मिलेगी नो सासो मुंगता बिल्कुल सही जवाब रखेड़ी नो तासो चुकम दे इंशाल्लाह तासो बा इश्मा कॉस्मेटिक तरफ ना गिफ्ट जरूर मिलेगी तासो बिल्कुल खबर टैक्स हुशी नो बेबा तासो पल गिफ्ट चुकम दे अगर इसी को वाले सही ना नो द टूल मन ना टाइम दरअसल खत्म छे इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम तासो और दलो टाइम खत्म छे नेक्स्ट प्रोग्राम के बदर सकी जुल्बा मुलाकात और तासो बिल्कुल इस्तेमाल वाले इश्मा कॉस्मेटिक टूल प्रोडक्ट्स और हर जगह मिलेगी चर तक न मिलेगी कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने कॉल जरूर करवाई 342 311 2292 नेक्स्ट प्रोग्राम की बदर सकी जुल्बा मुलाकात तेरे पर दौलो ये लबमान।

0: 8:04 o'clock.
1: 8:04 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Hello, Samantha. Shafat Cosmetic. Shafat Cosmetic. Tarafa. Tasura Program Maurel. Shafat Cosmetic. Zindaba.
3: हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
4: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ। रेडियो अमन 88.4 कारक।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

ही खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: तर सभा सभा में चढ़ा नगुरी प्रोग्राम चिकिम निकना मिस्टर सुकुर दिमी काल सुकुर सर की ओस खबर की सेरो सर सर के गुरी नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: खुरकी में सु खबर के किम जिना
1: अलीना
0: खुरा की देखा रखना अलीना खोर और सराज किम निकना एक रखा रख प्रोग्राम की काल कलाई वेलकम हर कलाई दर थवी सरंग चला खुरा की शाये खेर खेर या ताई प्रोग्राम के देखा लो को सोर से बारा देखा लो को
1: जुमे पर इसमें क्या
0: अच्छा जुमे पर यानी दो द्रेव रोज बारा जिकम निकना प्रोग्राम के देखा लो को
1: जी भाई
0: अच्छा मना देखिए शुक्रिया देखिए प्रोग्राम के सफर में से पदले बिल्कुल वेला से
1: फरमाइश मिले
0: हो अच्छा सफर में से दाई ویسے رکیب خڑے کے دے نیازی صاحب کشمیری باندھانا ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم ایم ایس ڈی بھائی وعلیکم السلام ڈیر جوتا مننا

हजुर को मेवा प्रोग्राम के बिर्छु यस नरे दरता अबिन को संधरा छ कुमलो आगे ना पास गुरु छु अब प्रोग्राम के तो से काल तो से मेसेजेस बिल्कुल आवश्यक हो

हजुर को प्रोग्राम के त नजिएको अल्फावास दा कलाम पे दादर शिवाल कलाम बिल्कुल लवर उसरा इन्जॉय के और बिल्कुल चित हम सना जाए मुं शराब हो से तो रजू दे दे संदरे नपास तो से काल तो से मैसेजेस शरीक को

यानि बुलास बजेर से बजरी अवेल कल प्रोग्राम तो बोलते से वो पैदल में हम रोवर से जो अवेल कल मोसर प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन में के अब हम अवेल सिचा एनामुने गटरी के ना बढ़ेर खुशाल है यहाँ बढ़ेर बेताब है.